कौन जाने गुण तेरे, तेरे गुणा नू कोई नहीं जान सकता। आ एक दिन बड़ा बड़ा राजा बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दरबार सजया होया है, आके नमस्कार बहादुर शाह ने की थी। इदे वल तक के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की मुख दे विचों निकलिया, धन गुरु रामदास। बहादुर शाह बड़ा हैरान होया, संगत विच बैठा सोची जाता है। अगे भी कई बार सतगुरां नूं मिलिया, होर भी संगत आंदी है, पर जदों मैं मिलदा हां ते किड्डे प्यार विच भिज के सतगुरु आखदे ने धन गुरु रामदास। भी इस गल दे पिछे केड़ा राज छुपिया है, बैठा सोची जाता है। सतगुरु आखन लगे, क्यों बई बहादुर शाह केड़ियां सोचां सोचदा है, की सोचदा है? सतगुरु तुसी दिलां दियां जानन वाले, तुसी बुझ गए हो, जान गए हो मैं की सोचदा। ते सतसंगियो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ संगत नूं इक केड़ी गाथा सुना रहे। किंदे ओ समा सी, धन गुरु रामदास पातशाह श्री अमृतसर दे विच कार सेवा करा रहे सन। गुरु रामदास महाराज मौत संगत सेवा वास्ते आंदी, हुण भी सेवा आंदी है ना। कुछ बंदे निष्कामी होंदे ने, ते कुछ सेवादार जिन्हां ने दिहाड़ीदार होंदे ने, अपनी मेहनत मजदूरी लेंदे ने। इसी तरह कुछ सेवादार निष्काम सेवा करन वाले, ते कुछ दहाड़ी वाले आते। सारा दिन सेवा हुंदी, जदों पेंदी शाम ते गुरु रामदास पातशाह आप आते, दो लाइना लग जांदियां। एक कितार दे विच ओ खलो जांदे जिन्हां ने निष्काम सेवा कीती है, ते एक पासे जिन्हां ने दहाड़ी लैनी। सब तो पहला गुरु रामदास पातशाह निष्काम सेवकां कोल जांदे, कले कले नूं मिलदे ते किड़ियां किड़ियां असीसां देंदे। फिर जिन्हां दी जिन्नी भी दहाड़ी बनदी है, दहाड़ीदार वल उधर जांदे, ते जिन्ने जिन्ने किसे दे पैसे बनदे ने दे दिंदे। आ इक दिन दी गल है, शाम दा वक्त है, दो लाइना लगिया हुईया ने, ते सतगुरु रहमत करन आए निष्काम सेवकां वल। ते सतगुरु की देख रहे ने, एक बुढ़ा बाबा अत दी बजुर्गी, जेड़ा हर रोज शाम नूं दहाड़ी ले लेंदा है, ते अज निष्काम सेवकां विच खलोता है। सतगुरु निष्काम सेवकां नूं मिल रहे ने, असीसां दे रहे ने। जदों इस दे कोल गए बाबे दे बाबा, तेनू भुलेखा लग गया है, ये सारे सेवक निष्काम ने, ओह लाइन लगी हुई है, तू उधर खलो, मैं उधर भी आवांगा, तू भुलेखे विच लग गया। सतगुरु बोली जांदे ने, बाबा अखां विचों हंजू केरी जांदा है, मैले फटे गल विच कपड़े, अत दी बजुर्गी है। सतगुरु रोज पैसे लै जांदा, मुक जांदे ने। आज मैं किसे दे कोलो सुनिया है, दुनिया दा धन मुक सकदा है, पैसे मुक सकदे ने, पर गुरु रामदास पातशाह तेरी रहमत नहीं मुकदी। अज बख्शिश करो, रो के आख रहा है बाबा, पैसे लेंदा हां, गरीबी है, मजबूरी है, कित्थों खावां। अज बख्शिश करो, अज दी दहाड़ी दे मैं पैसे नहीं लेने,
ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ

पर मैनू एक गल दसो, इस गल दे नाल मेरा की संबंध? ये गल दसो। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्यार दे विच भिज के नेत्र बंद करके आखन लगे, बहादुर शाह ओ बुढ़ा बाबा कोई होर नहीं, ओ तू ही हुई सी जो एक एक प्रसादे नू तरसदा रहिंदा सी, तू ही हुई सी। अज जन्म लैके सारी दुनिया ते राजा राज करदा है, किड्डे किड्डे नौकर चाकर तेरे अगे हाथ बन्नी खलोते ने, आ देख लै गुरु रामदास दीयां रहमतां तेरे कोल अज तक नहीं मुकियां, अज तक नहीं मुकियां, पता नहीं किन्ना चिर तू खाणियां ने, किन्ना होर सुख भोगना है, कौन जाने गुण तेरे चरणा ते डिग पिया, तेरी हो गया अज बहादुर शाह है सतगुरु, तेरे गुणा नू कोई नहीं जान सकता, तेरिया रहमतां नू कोई नहीं जान सकता। सो सत्संगियो बख्शिश हो रही है, इसीलिए गुरसिख नू ए हुक्म है, तू पुन दान करदा रहा, तू गरीब दे मूह दे विच पांदा रहा, जिथे धन कमा के अपने बच्चियां दे मुख पांदा है ना, गरीब दे मूह विच भी पाया कर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आख रहे ने, गोलक राखे ने जो शलका करे व्यापार, कहे गोविंद सिंह लाल दी भोगे नरक हजार। जेड़ा दसवंद नहीं ना कटदा वो जीवदे जीव ही नरक भोगदा है, उहदा सारा धन हॉस्पिटलां विच कचहरियां विच मुकदमियां विच ही लग जाता है, भोगे नरक हजार, हजारां नरक जीवदे जी भोगदा है। नहीं बई, नेक कमाई करके किसे भुखे नू भोजन छका दिया कर, किसे तन दे नंगे नू कपड़ा पहना दिया कर, किसे गरीब दे बच्चे दी पढ़ाई दी जिम्मेवारी ले लिया कर, किसे गरीब नू किताबां ही ले दिया कर, किसे गरीब दी बच्ची दी शादी ते पैसे खर्च दिया कर। गुरु घर विच धन दी लोड़ है, उथे सेवा ला दिया कर। दसबंध कढ़न दे कई तरीके ने, कई तरीके ने, पर जरूर कढ़िया कर, कोई फर्क नहीं पैंदा। महीने दे विच 30 दिन ने, ते 2 दिन दी कमाई ला दिया कर गुरु लेखे, ते सतगुरु बख्शिया करेगा। बाबा नंद सिंह दी बख्शिश करदे सन, औखा वेला आ जावे ना ते कदी भी दसवंध नहीं रोकना चाहिदा। देखो बाबा जी दे किहो जे बचन ने, औखा वेला आ जावे कदी भी दसवंध ना रोको, फिर सौखा वेला छेती आ जांदा है, सौखा वेला छेती आ जांदा है। कौन जाने गुण तेरे, ऐ मेरे मालक तेरे गुणा नू कौन जान सकता है।

गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुने गुंग जो याही, सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाई, चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन।

सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस पुन तीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कार मैं न कहो सब तो

पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे संत साजन पए सर से पूरे गुरु ते जानी सुनते पुनी

नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणस्ये सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोच पालं।

0: चतुर्चक्र करता चतुर्चक्र हरता चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चाचरी छन्ना सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न चित्रे न मित्रे परे है पवित्रे
1: भगवती चंतु है प्रसाद करते कि आचिज देसे कि आबिज पेसे
2: आगज कर में कि आबिज पर में
1: आबिज लोके कि आदित सो
2: क्या तुझ बरने कि विभुत करने
1: राजन प्रभा है कि तन्मंग तुझा
2: क्या सोक बरने कि सर्वा बरने
1: जगदन दिती है कि छत्रंग छत्रंग

0: नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र
1: नमो राज राजे नमो इंद्र
0: नमो अंधकार नमो तेज तेज
1: नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीज
0: नमो राज संताम संग शांत रूपे
1: नमो परम तत्व।

0: जित किए चार
1: तब चन नरमन रहे हमारा अपना जान करो प्रित पारा
0: दुस दूंगा वो आप हाथ मोई बचाओ
1: सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करता।

0: एक सिख हमारे तारे चुन चुन सत्र हमारे मारिए
1: आते मुझो बड़ी मरण काल का त्रास मरिए
0: जो सदा हमारे पक्षा श्री तुझो करो रक्षा
1: रखे हमारे साहिब संसाए प्यारे
0: दीन बंद दुष्ट के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता
1: काल पाए ब्रह्म अवतरा काल पाए शिव जू अवतरा
0: काल पाए कर विषम प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
1: काल जोगी शिव की हो वेद राज में मौजूति हो
0: जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
1: जमन काल सब जग बनायो देव देश मचायो
0: आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा
1: नमस्कार तुसी को हमारी सको बजाज नाप सवारी
0: शिवकर को सब गुण सुख दियो संतरण को पल मोहबत कियो
1: घर के अंदर की जाने तुले बरे की पेर बिछाने
0: चिट्ठी ते कुंचे रसूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
1: संतन दुख पाए की सुख पाए श्रृंग सुखी
0: एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने
1: जब कर तारा प्रजा तब देव पारा
0: जब

0: ले ओ बिचारी।
1: कृपा करिए भजग माता कंसकरा कुरन सबराता।
0: किल बिच सकल देखो हरता दुष्टों की उनको छह करता।
1: श्री शजब दियाला पुरन ग्रह गंतत काला।
0: मन बाचन फल पावे सोई दुख न तिसे बेआपत कोई।
1: स्ने गुंजो यास रस न पावे स्ने मोर्ष लचतता आवे।
0: दुख दर्द पो निकट न तिन नर के रहे हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई।
1: संवत सत्र सहसनी जय सहसन दीन की जय।
0: पात्र सुधी अश्मी रविवारा ती सुधर ग्रंथ सुधारा।
1: सया पाइन के जब दे तुमरे तब दे कुवं त्रिनिया नियो।
0: राम रहीन पुराण कुरान ने कहे मत एक न मानियो।
1: सुन सासवे जो बेर हे मेक न जानियो।
0: श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न के हो सब तोहे बखानियो।

0: जाय सहसा कित संजम रहे करम कमाए
1: सहसे जीव मलिन है कित संजम तोता जाए
0: मन तो वो शब्द लागो हर्षो रहो चलाए
1: कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजय इहो सहसा इव जाए
0: जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हारिया
1: ए तिसना वड़ा रोग लगा मरण मनो विसारिया
0: वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही।

0: अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा
1: गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा
0: गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा।